0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो ईबीबी काई और रेडियो के कैन ईटी विनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विन्यो और रेडियो ईटी विन्यो ईटी विन्यो ये भी काई और रेडियो के कैन

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो इटी विनो और रेडियो इटी विनो और रेडियो